0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: जान

Radio Olive, your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.

Radio Olive, your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲੋ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। रेडियो

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: सोचो, अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Hi everyone, this is Benny Deol here. Olive Radio 106.3. Jio Bindas.
4: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार.

0: इनकट तक सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस फेस्टिव सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलू स्टोर्स में।
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 May तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: वाओ, हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: हाय देयर फ्रेंड्स, दिस इज डीजे सुकेतु। डीजे सुकेतु, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
4: रेडियो ऑलिव नंबर वन।
3: यू आर लिसनिंग टू, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: You're listening to Radio Olive 106.4

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: हाय गाइस, इज अबार्ट शक्ति खुराना और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो ऑलिव।

ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते, ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।

छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Cool song. Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
4: Kya baat hai sir? Kya baat? Ye baat hai.
5: Cool song.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

Hello, good morning. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with your show का नाम है Life Must Hai. Welcome to Life Must Hai. और ईद holidays का सबसे emotional moment कौन सा होता है? जब suddenly याद आता है कि कल से फिर office है. मतलब I know छुट्टियाँ खत्म होने वाली हैं officially. वो last lazy holidays चल रहे हैं जहाँ पर आपको पता है कि बस अब काम पे वापस जाना है. सो हॉलीडेज में टाइम भी वियर्ड बिहेव करता है. 3 दिन कैसे निकल जाते हैं, 4 दिन कब बीत जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता. और रिसर्चेस बोलती हैं कि हॉलीडेज एक्चुअली ब्रेन रीसेट मोड क्रिएट करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को टेम्परेली रिड्यूस कर देता है. इसीलिए ईद के बाद लोग मेंटली लाइटर फील करते हैं. और कतर में ड्यूरिंग हॉलीडेज ऑनेस्टली अलग ही सब चल रहा होता है. रोड्स मतलब एकदम ऐसे लाइट्स के साथ वाइब लोड्स रोड्स दिखती हैं, कैफे एकदम फुल रहते हैं, मॉल एकदम पैक्ड, और कारक चाय की जो लाइन है वो एंडलेस होती है. सो आज का मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपकी हॉलीडेज जो थी वो प्रोडक्टिव थी या बस पीसफुल थी. 3311106 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: वेलकम बैक, यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान. शो का नाम लाइफ मस्त है. आजकल लोग फास्ट लाइफ से थक कर स्लो लाइफ को मतलब कूल बोल रहे हैं. इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर ह्यूज ट्रेंड चल रहा है स्लो लिविंग का, यानी स्लोली कॉफी बनाना, बुक पढ़ना, सनसेट देखना, प्लांट्स ग्रो करना, धीरे धीरे मॉर्निंग को इंजॉय करना. और लोग मतलब ये सब चीज़ें वापस से इंजॉय कर रहे हैं जो पहले किया करते थे. मतलब हमने देखा है हमारे मम्मी पापा इस लाइफ को इंजॉय कर रहे थे और हमारे टाइम में आते आते सब कुछ बहुत फास्ट हो गया. पर अब एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि हसल कल्चर ने लोगों को मेंटली एग्जॉस्ट कर दिया है. हर वक्त प्रोडक्टिव रहना, हर वक्त बिजी रहना, ये सब बर्नआउट क्रिएट करता है. इसीलिए अब लोग इंटेंशनली स्लो लाइफ और सॉफ्ट लाइफ को चूज कर रहे हैं. फनी बात पता है क्या है कि पहले बोरिंग चीज़ें बोली जाती थी, आज सेम चीज़ों को लग्जरी बोला जाता है. जैसे कि घर पे खाना बनाना, स्लीप जल्दी चले जाना मतलब सोने के लिए, रीडिंग बुक्स. बेसिकली इंटरनेट बोल रहा है कि काम इज कूल नाउ. सो यू हैव टू चेक आउट कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको काम करती हैं लाइफ में. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: बात है सर, क्या बात, ये बात है.

0: किताबों की बात ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। आज की बुक थोड़ी सी यू नो अमेजिंग है। किताब का नाम है डेज एट द मोरिसाकी बुक शॉप। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम और मैं हूँ मुस्कान आपके साथ।
1: ओके बुक इन फोकस विद मुस्कान।
0: आपको पता है जब भी मैं किसी किताब के बारे में बात करती हूँ तो मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नया आपको बताया, कुछ नया कुछ खुद से सीखा। ये एक जापानीज बेस्ट सेलर किताब है जो कि एक स्मॉल सेकेंड हैंड बुक स्टोर के अराउंड बेस्ड है। सो ये जो किताब है ये रीडिंग एक्सपीरियंस नहीं बल्कि एक वॉर्म यू नो हग की तरह फील करती है। स्टोरी एक लड़की की है जिसकी लाइफ सडनली मेसी हो जाती है और फिर वो अपने अंकल की ओल्ड बुक शॉप में शिफ्ट हो जाती है। स्लोली बुक्स, साइलेंस और सिंपल लाइफ उसको इमोशनली हील करती है। और जापान में हीलिंग फिक्शंस का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। मतलब आप वहाँ की किताबें देखोगे, वहाँ की जो फिक्शंस देखोगे ना, ये आपको अलग ही फील देती हैं। सो कियोटिक लाइफ से स्केप के लिए लोग काम स्टोरीज पढ़ते हैं और ये बुक एग्जैक्टली वही कम्फर्ट फीलिंग देती है। परफेक्ट हॉलीडे रीडिंग। तो अगर छुट्टियों में आपने कुछ नया पढ़ा है ये ईद की छुट्टियों में तो आप मुझे बताओ कि आपने कौन सी किताब पढ़ी और अगली कौन सी किताब है जो आपने सोच रखी है पढ़ने के बारे में। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। स्टे ट्यून्ड। जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive, Jio Windows. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

सो बात करूं अगर फैशन इंडस्ट्री की, तो ऑफिशियली कंफर्ट को स्टाइलिश बना दिया गया है, ये तो बात पक्की है। आजकल चंकी स्नीकर्स, क्रॉक्स और ओवरसाइज फुटवेयर बड़े इन है भाई, इतनी गर्मी में और आप कर भी क्या सकते हो। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। पहले हम ऐसा सोचते थे कि ये सब कौन पहनेगा, पर अब मतलब यही हमें ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा लग्जरी है। अब लोगों को अनकंफर्टेबल ब्यूटी ट्रेंड से ना लोग बोर हो गए हैं, इसीलिए उन्हें कंफर्ट प्लस वियर्ड एस्थेटिक पसंद है जो कि ट्रेंड में चलते हैं। लग्जरी ब्रांड्स भी इंटेंशनली ऐसे फैशन लॉन्च कर रहा है जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि अनयूजुअल चीज़ें ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करती हैं और इन्हें अगली फैशन कहा जाता है। और सोशल मीडिया पर जितना स्ट्रेंज आप इसे समझते हो उतना ही ये वायरल होता जाता है। मतलब व्हेनेवर यू विल सी, आप देखोगे कि अलग अलग जगहों पर लोग अपने कंफर्ट की बात कर रहे हैं। अब अगर आप देसी ब्लिंग जैसा शो देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई कंफर्ट नाम की कोई चीज नहीं है, 20 किलो मेकअप और 40 किलो के कपड़े इज कंपल्सरी एवरी डे। बट नहीं, एक्चुअली हम जैसे लोगों की लाइफ में जहां पर हम एक 8-10 घंटे की जॉब करते हैं, जहां पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज कर पाए, वहां पर हमें कंफर्ट चाहिए होता है। हम ओवरसाइज्ड टी शर्ट्स और डेनिम्स और जो ये स्नीकर्स हैं इसी में कंफर्टेबल रहते हैं। बाय द वे, विच इज योर कंफर्ट क्लोथिंग? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

सो छुट्टियों में बेसिकली फ्राइज भी इमोशनल सपोर्ट लगता है यार. मतलब वेकेशन फूड साइंटिफिकली जेन्युइनली बेटर फील हो सकता है, ऐसा हमेशा से कहा जाता है, पर मैंने इन चार दिन की छुट्टियों में सब कुछ फील किया है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. भाई वेकेशन फूड ऐसा कहा जाता है कि अच्छा और बेटर फील होता है क्योंकि ब्रेन बहुत रिलैक्स्ड स्टेट में होता है और टेस्ट को ज़्यादा पॉजिटिवली एक्सपीरियंस करता है. अब आप खुद सोचो, जब आप ऑफिस में होते हो तो आपको पता है कि आपको भागते दौड़ते अपना लंच कंप्लीट करना है, कभी शाम को भूख लगती है तो बस टेबल पे बैठे बैठे पता ही नहीं चलता कि आपने क्या खाया. यानी स्ट्रेस कम हो जाता है वेकेशंस में और एंजॉयमेंट ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए वेकेशंस में लोग कैलोरीज भी इग्नोर कर देते हैं. और ईद तो वैसे भी फुल फूड फेस्टिव होता है यार यहाँ पे. मतलब अच्छी अच्छी डेजर्ट्स, ग्रिल, स्वीट्स, मिडनाइट स्नैक्स, सब कुछ चलता है. और फनी थिंग इज कि हॉलीडेज में वन चीट मील ऑटोमेटिकली फुल वीक बन जाता है. सो आई विल से कि फूड मेमोरीज स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज होती हैं, इसीलिए चाइल्डहुड ईद का जो टेस्ट है वो आपको अभी तक याद रहता होगा. इवन कोई भी फेस्टिवल आप ले लो, आपको हमेशा ना फेस्टिवल्स याद रहते हैं. उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप बहुत रिलैक्स्ड रहते हो, आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को इन्जॉय कर पाते हो. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलर. बाय द वे, हाउ वॉज योर ईद बताइए मुझे 3311063 पर. स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास.

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
4: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
5: हाय, मैं राजकुमार राव।
6: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
7: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: आजकल लोग वैसे भी वीकेंड को ना रिकवर फ्रॉम यू नो फोन्स कर रहे हैं, लेकिन अभी तो आपको ऑलरेडी इतनी लॉन्ग वीकेंड मिल गया था जहां पर आपको खूब सारी छुट्टियां मिली. सो आई एम श्योर आपने बहुत अच्छे से ये अपना जो हॉलीडेज है उसको निकाला होगा. लो डोपामाइन वीकेंड हम यहाँ पे इसे कहते हैं, यानी कि इंटेंशनली आप लेस स्क्रॉल करते हो, नोटिफिकेशंस को बंद करके रखते हो, ओवर यू नो स्टिमुलेशन को दूर रखते हो और ब्रेन जो है वो लगातार ओवर लोडेड फील करता है. इसीलिए अब हम जो हमारी छुट्टियां हैं उसको इतना रिलैक्स करते हैं. सोशल मीडिया ऐप्स ना बहुत ज़्यादा डोपामाइन ट्रिगर सिस्टम यूज़ करती हैं, इसीलिए एंडलेस स्क्रॉलिंग एडिक्टिव फील कराती है. मतलब मैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है मैं उन्हें स्क्रॉल करती हूँ, उनका पूरा प्रोफाइल देख लेती हूँ. ऐसा लगता है कि उसने बर्थडे कैसे मनाया, हाउ वॉज द ड्रेस, क्या चल रहा है ट्रेंड में, बस यही सब देखने के लिए मैं इंस्टाग्राम चलाती रहती हूँ. और फिर बाद में मुझे रियलाइज होता है कि मैं कितना गलत कर रही हूँ खुद के साथ. सो सोचिए कि सोशल मीडिया मतलब हमारा दिमाग कहाँ से कहाँ लेकर चला जाता है. पर इन छुट्टियों में मैंने बिल्कुल भी सोशल मीडिया नहीं चलाया और खुद के लिए खूब टाइम निकाला. सो फनी पार्ट ये है कि आजकल डूइंग नथिंग इज लग्जरी, यू नो. और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर आपने कुछ नहीं किया है और सिर्फ आराम किया है तो भी आपने बहुत कुछ किया है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: बात है सर, क्या पर ये बात है. Awesome.

Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

मैं हमेशा बोलती हूँ कि छोटी छोटी चीजों में ही एक्चुअली बहुत बड़ा यू नो सार छुपा होता है. सब आजकल लोग चाय को भी सिनेमैटिक बना रहे हैं. आजकल सोशल मीडिया पर मेन कैरेक्टर एनर्जी जो है वो ट्रेंड कर रहा है, यानी ऑर्डिनरी लाइफ मोमेंट्स को स्पेशल ट्रीट करना, लाइक सनसेट वीडियोज, स्लो मोशन कॉफी पोरिंग, रेनी विंडो क्लिप्स और स्लो वॉक्स विद म्यूजिक. अब देखो कदर में बारिश तो है नहीं, सो यहाँ पर मैं आपसे बस यही कह सकती हूँ, जो स्लो मोशन कॉफी पोरिंग है या फिर स्लो वॉक विद म्यूजिक है, यही सब है जो हमारे पास है, ठीक है. और उसके लिए भी आपको सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, अदरवाइज धूप बहुत तेज हो जाती है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि स्मॉल मोमेंट्स को इंटेंशनली नोटिस करना हैप्पीनेस को इंक्रीज करता है. मतलब मान लो आपको प्रोटीन खाना पसंद है, मान लो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पसंद है और आपने आज का दिन भर का प्रोटीन इंटेक पूरा कर लिया, तो इसी में आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है यार, लोग नहीं कर पाते. सो बेसिकली लोग बोरिंग लाइफ को एस्थेटिकली ब्यूटीफुली बनाना सीख रहे हैं और धीरे धीरे ये ट्रेंड काफी होलसम होता जा रहा है. इसीलिए हैप्पीनेस मोस्टली स्मॉल मोमेंट्स में ही होती है, एंड यू जस्ट हैव टू चेक आउट कि आपको किस चीज में सबसे ज्यादा खुशी मिल रही है दिन भर में. बस उसे थोड़ा सा ग्लोरीफाई करना है, रोमांटिसाइज करना है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड टू यू बिंदास.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

प्रॉपर मील नहीं होता, बस रैंडम फ्रिज एडवेंचर होता है। मतलब मैं तो कई बार ऐसा फील कर चुकी हूँ, पर इन छुट्टियों में मैंने ज्यादा फील किया क्योंकि आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। इंटरनेट पर गर्ल डिनर ट्रेंड काफी वायरल हो रखा है। बेसिकली रैंडम कॉम्बिनेशन जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, चिप्स, चीज, जूसेस, चॉकलेट्स, और फिर लोग प्राउडली बोलते हैं कि दिस इज डिनर। बहुत ही फनी लगता है देख के, लेकिन एक्सपर्ट्स बोलते हैं मॉडर्न बिजी लाइफस्टाइल ने ईटिंग हैबिट्स को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। स्पेशली यंग एडल्ट्स जो हैं वो अपने कन्वीनियंस बेस्ड ईटिंग ज़्यादा करते हैं, और सोशल मीडिया सिंपल मील को एस्थेटिक बना देता है। मतलब अगर आपने आज घर का खाना खा लिया है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और सही भी बात है यार, आज की लाइफस्टाइल में हम मतलब या तो कुछ करना नहीं चाहते, और अगर हमारा दिन बहुत हेक्टिक है तो हमें लगता है कि आज ऑलरेडी बहुत काम कर लिया है, या फिर अगर छुट्टी है तो ऐसा लगता है कि आज कुछ भी काम नहीं करना। बट यूजुअली ये छोटे छोटे जो फ्रिज एडवेंचर्स हैं ये कभी कभी मतलब आई फील कि बड़ा गिल्ट देते हैं बाद में। सो व्हाट अबाउट यू, आपको क्या लगता है कि डिनर्स में सबसे बेस्ट क्या है जो आप इजीली घर में बना के खा सकते हो, जिसमें आपको आलस भी आ रहा हो तो भी आप बना लेते हो? 3311106 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
0: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
1: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
0: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए Spectacular festival offer.

मेरा फॉर्मूला तो एकदम क्लियर कट है कि अगर मेरे पास बहुत ज्यादा अमाउंट होता भी है तो भी मैं लग्जरी बैग्स नहीं कलेक्ट करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन भर जाता है किसी एक पर्टिकुलर बैग से, और एक पर्टिकुलर बैग जो है वो हम एक पर्टिकुलर टाइम तक ही लेना पसंद करते हैं। ऑल दो आज के टाइम पे लोगों को बैग्स का बहुत ज्यादा शौक है, बट आई बिलीव कि भाई एक मिडिल रेंज में बहुत अच्छे यू नो कलेक्शन आपको मिल जाता है अच्छे ब्रांड्स में। सो आजकल लोग लग्जरी बैग से ज्यादा मेमोरीज कलेक्ट करना चाहते हैं। इवन जो ये आजकल के नए लोग हैं, नए जेंजी जिन्हें हम कहते हैं, ये एक्सपीरियंस पर ज़्यादा स्पेंड करते हैं, लाइक कॉन्सर्ट्स, ट्रैवल, कैफेज, एक्टिविटीज़। मैंने अपनी यू नो सोशल मीडिया पर इतने सारे लोग देखे हैं जिन्हें मैं एक्चुअली पर्सनली जानती हूँ, बट नॉट रेगुलरली कनेक्टेड विद देम, पर उनकी एज होगी मैक्सिमम लाइक अर्ली ट्वेंटीज़ और मिड ट्वेंटीज़, लाइक 24-25, पर इतना ट्रैवल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़, जैसे ही चार दिन की छुट्टियाँ मिली एक नई कंट्री एक्सप्लोर कर ली इंस्टेंट ऑफ एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि मेमोरीज सोशल मीडिया और इमोशनली दोनों जगह पर लॉन्गर स्टे करती हैं। और बहुत सारे लोग रियलाइज कर रहे हैं कि शॉपिंग हैप्पीनेस जो है वो बहुत टेम्प्रेरी होती है, एक्सपीरियंसेस मेमोरेबल होते हैं, आपके पास स्टोरीज कलेक्ट हो जाती हैं, आप लोगों से बात करना सीखते हो, नए कल्चर सीखते हो, इसीलिए स्टेकेशंस और स्मॉल ट्रिप्स भी पॉपुलर हो गए हैं। अगर आपके पास लंबी छुट्टियां नहीं है तो आप ये सब तो कर ही सकते हो, बट अभी काफी लंबी छुट्टियां मिली थी आपको। बाय द वे, हाउ वाज योर हॉलीडेज? 3311063 इज माय नंबर। स्टिल आई नो कि आपकी छुट्टियां चल रही हैं, पर काम पे जाने से पहले आप मुझे बताइए कि आपने अपनी छुट्टियों को कैसे स्पेंड किया। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके और अब एक और ग्रेट न्यूज विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
2: नमस्कार मैं हूं आर माधवन नमस्कार मैं हूं आर माधवन आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM

0: कभी कभी बस बेड पर पड़े रहना भी सेल्फ केयर लगता है, जो मुझे लग रहा था पिछले दो तीन दिन से। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। मतलब पिछले एक दो दिन से ऐसा हो रहा था कि आई वॉज इंजॉइंग माई टाइम, माई मी टाइम, और नेटफ्लिक्स देखना, अपने पसंद के टाइम पे उठना। इंटरनेट का न्यू वर्ड है बेड रोटिंग अब, यानी इंटेंशनली बेड में रहना, मूवी देखना, फोन यूज करना और कुछ प्रोडक्टिव ना करना। साउंड्स लेजी राइट, लेकिन एक्सपर्ट्स बोलते हैं बर्नआउट जनरेशन जेन्युइनली मेंटली एग्जॉस्टेड है और हर वक्त प्रोडक्टिव रहना तो पॉसिबल है नहीं, और बॉडी कभी कभी ना फोर्स्ड पॉज मांगती है। लेकिन डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्ट बहुत जरूरी है, और कॉन्स्टेंट आइसोलेशन अनहेल्दी हो सकता है, इसलिए बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैंने तो इस 4-5 दिन में बहुत इंजॉय किया है, बहुत सारे लोगों से मिला, शाम को जाके अपने दोस्तों के साथ बैठा, चाय पिया, सब कुछ किया। बट उसके अलावा सुबह अपने मन के टाइम पे, जब मेरा मन किया तब मैं उठी, जब मेरा मन किया तब मैंने नेटफ्लिक्स ऑन किया, और जितना मन किया उतना नेटफ्लिक्स देखा, बिंज वॉच किया है बाय द वे बहुत कुछ। सो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपकी छुट्टियां कैसी रही। 1063 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio Bindas.
1: Awesome. Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour. Song of the
2: hour. Kya baat hai sir? Kya baat? Ye baat hai. Awesome.

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में. फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बेनोम रन. इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर. ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे. फाल्कन फिटनेस बेनोम रन, वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: आज बहुत काम
1: मेरी भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
1: wow.
0: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
1: जाए।
0: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडे। सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: okay, I'm not with
0: her. तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: okay, that's it. Life must have...
2: आजकल मैं जब भी इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो मुझे पुराने गाने सुनने के लिए मिलते हैं। इतने वायरल हो रखे हैं पुराने गाने विद न्यू रीमिक्स, और कभी कभी तो लोग पुराने गानों में रीमिक्स भी नहीं पसंद करते, सिर्फ पुराने गाने ही चलाना चाहते। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। बाय द वे, लाइफ मस्त है में भी बहुत बार हम पुराने गाने प्ले करते हैं, बट यू नो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो पुराने गानों को बहुत डिस्कवर कर रही है। इंस्टाग्राम रील्स पर ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग सडनली बहुत वायरल हो रहे हैं क्योंकि नॉस्टैल्जिया इमोशनली पावर फुल होता है। सो म्यूजिक जो है वो डायरेक्टली मेमोरी सिस्टम एक्टिवेट करता है, इसीलिए जो पुराने गाने हैं वो आपको इमोशंस को आपके ट्रिगर कर देते हैं। और रीमिक्स कल्चर के थ्रू ना ये जेंजी भी रेट्रो म्यूजिक को डिस्कवर कर रहे हैं। फनी पार्ट पता है क्या है, जो हमारे मम्मी पापा गाने सुना करते थे अब वही ट्रेंडिंग रील्स में हमको सुनने के लिए मिलते हैं। और उस टाइम पर हम कहते थे कि इनके टाइम पे गाने कितने बोरिंग है, उस टाइम पे समझ नहीं आता था कि गानों का असली यू नो एसेंस क्या है, पर अभी समझ में आता है, अभी समझ में आता है कि एक्चुअली आज के गानों में और पुराने गानों में कितना बड़ा डिफरेंस है। बाय द वे, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

Radio Olive, your happiness frequency. इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

0: इनकट तक सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस फेस्टिव सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलू स्टोर्स में।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

कई सारे दिन की छुट्टियां मिलने के बाद बहुत सारे मैसेजेस आए कि भाई कभी कभी ना बेस्ट मोमेंट जो है वही होते हैं जो प्लान नहीं होते. रैंडम चाय, अनएक्सपेक्टेड लाफ्टर्स, लेट नाइट ड्राइव, फैमिली कॉन्वर्सेशन, और पिछले कुछ दिनों में हम सब ने बस यही सब किया है बिना किसी काम के. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सिवाय हेल्थ सेक्टर के लोगों की, मतलब यार मतलब कहना पड़ेगा, सल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ सेक्टर वॉज 24/7 एक्टिव. कतर में पूरी तरह से अगर कोई एक्टिव था तो वो हेल्थ सेक्टर ही था. यानी मोमेंट्स ना एक्चुअल मेमोरीज बन जाते हैं जब आपको छुट्टियां मिलती हैं. पर मुझे ऐसा लगता है कि यू नो समटाइम्स वी फील कि हॉलीडेज का रियल पर्पस शायद वो नहीं होता जो हम सोच रहे होते हैं. स्लो होना, फील करना और लाइफ को थोड़ा इंजॉय करना, क्योंकि वापस से अब वर्किंग डे स्टार्ट होने वाले हैं. उससे पहले आई विल से कि आप अपनी लाइफ को वापस से थोड़ा सा लाइन पर लेकर आइए.

0: आई एम श्योर आपका रूटीन पूरी तरह से चेंज हो रखा होगा. सो जब अब कल से काम पे जाना पड़ेगा तो थोड़ा सा तो फील होगा, बट इट्स ओके. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा. कल सुबह 10 बजे लाइव मस्त है लेकर हाजिर रहूंगी विद न्यू कॉन्वर्सेशंस, न्यू सॉन्ग्स. और सुनते रहिए, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: Radio Olive Pie. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh. Fresh song of the hour. Ye gana.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: हाय, मैं हूँ सुहाली खान एंड यू आर लिस्टिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
4: Olive Music Marathon. 1 ghanta. 1 ghanta. Non-stop back to back gaane.

0: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनोवेशन एट बेनोम रान। इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर। ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे। फाल्कन फिटनेस बेनोम रान, वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Olive Music Marathon. 1 ghanta non-stop back to back gaane.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके और अब एक और ग्रेट न्यूज विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
2: ऑलिव म्यूजिक मैराथन एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha Agia ji aapke saath Olive Recharge lekar. A very good afternoon, meri jaan. कैसे है, क्या हाल चाल है, हाउ हैज द वीकेंड बिन, सैटरडे कैसा ट्रीट कर रहा है, सब जानना चाहती हूँ, बताओ मुझे फटाफट से मैंने क्या किया. वो तो देखो यूजुअल चीज़ें तो आई डिड, यू नो अबाउट दैट. और भी मैंने कुछ किया है, इस्तेमाल किया है फुल, यू नो, इस फ्राइडे का मैंने शेयर करूँगी आपसे कुछ ही देर में. पहले आपके बारे में जानना चाहती हूँ, तो आ जाइए 3311 1063 पर या फिर कॉल कर दीजिए 4444 1063 पर और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.

तनीषा के साथ है आप रेडियो ऑल 106.3 एफएम पर, ऑल रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. और एक बहुत बढ़िया चीज पढ़ी मैंने एंड आई थॉट कि या सिचुएशंस तो देखो लाइफ में आएगी आएगी, अगर सब कुछ रोज ही हैप्पी रहा तो हम बोर हो जाएंगे कि भाई ये क्या है, सब बढ़िया चल रहा है. वो अप्स को सेलिब्रेट करने के लिए हमें डाउन्स की ज़रूरत होती ही होती है. एंड कभी कभी ये होता है कि हम उन डाउन्स को ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने देते हैं, ओवर पावर करने देते हैं. उस टाइम पर ये चीज़ का ख्याल रखो कि हर समस्या के 3 समाधान होते हैं मेरी जान. स्वीकार करो, बदल लो या फिर छोड़ दो. जो आपके बस में है उसे ही आप चेंज कर पाओगे, जो नहीं है उसके बारे में पॉन्डर करके सोच के क्यों अपने आप को कष्ट देना. सो जस्ट लेट इट बी. और अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो इट इज़ यू नो छोटी सी चीज़ है एंड यू कैन लेट इट गो लाइक दैट, तो वो कर लो. और दोनों ही चीज़ें नहीं करनी है एंड यू थिंक यू कैन चेंज द सिचुएशन, यू कैन चेंज द वे इट इज़ गोइंग, तो बस लगे रहो उसमें, एफर्ट्स डाल दो अपने सारे के सारे. जी हाँ, और फिलहाल मैंने एफर्ट्स डाल दिए हैं बढ़िया सी प्लेलिस्ट आपके लिए क्यूरेट करने में और बढ़िया गाना भेज रही हूँ आपके लिए. तो सुनते रहिए रेडियो ऑल, जियो बिंदास.

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Olive Recharge.
0: Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
2: Olive Recharge.
3: This hour is brought to you by
4: Shine Smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
5: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: तनिषा
1: तनिषा के साथ आप रेडियो 106.3 एफएम पर ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर। और चैट जीपीटी तो हम सब इस्तेमाल करते हैं ना, हर छोटी चीज उससे पूछने की आदत हो गई है। इनफैक्ट आई आल्सो डू दैट। सो आजकल एक नया प्रॉम्प्ट ट्रेंड कर रहे हैं एंड आप चैट जीपीटी से बोल सकते हो कि भाई तू मुझे रोस्ट कर, तू मेरे बारे में बता जितनी भी इन्फॉर्मेशन तुझे है और फुल ऐसे हिलारियस फनी वे में सरकास्टिक तरीके से बता। आप रिस्पॉन्स सुन के चौंक जाओगे कि वो हमें कितना ज़्यादा जान चुका है। हम जो रैंडम चीज़ें उससे पूछ रहे हैं उसने हमारी पर्सनालिटी फिगर आउट कर ली है भाई उससे। तो ज़रा बच के रहो, एक बार ना वो यूज़ करके देखो प्रॉम्प्ट एंड यू विल रियलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड उसके बाद से मैंने तो बहुत कॉशियसली से यूज़ करना शुरू कर दिया बिकॉज़ ChatGPT knows a lot about me now and I am scared with all that information.

0: तनीशा
1: तनीशा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 एफएम पर ऑल रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. एंड हम इंसानों को ना नॉस्टैल्जिया में जीने की बड़ी आदत होती है एंड उसी नॉस्टैल्जिया को हिट करते हुए वीवा जो ग्रुप था बैंड था बेसिकली अ गर्ल पॉप बैंड दे हैव कम अप विद देयर म्यूजिक एल्बम और बेहतर साउंड के साथ जो 20 ईयर्स के बाद अब फिर से एक बार स्ट्रीम हो रहा है और वायरल भी हो रहा है. सो इफ यू वर अ फैन देन यू मस्ट बी अ फैन नाउ. सो गो चेक इट आउट और फिर से वो पुराने दिन जीने का आपको मौका मिलेगा. स्टे ट्यून्ड एंड जी बिंदास.

0: तनिषा।
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha है आपके साथ, Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर। एंड क्या कहीं आईना देखते हो तो खुद को देखने के लिए रुक जाते हो? पहले तो ये बहुत अच्छी बात है, सेल्फ लव होना चाहिए, खुद को सबसे ज्यादा पसंद करना ही चाहिए। बट देर इज अ वर्ड फॉर दिस। यस, ये जो एक्ट है ना हमारा सेल्फ लव का छोटा सा, जो हम चुपके से कर लेते हैं, कहीं भी आईना दिखे तो देख लेते हैं, उसे कहते हैं एसोप्ट्रोफाइल। यस, EsoptrophilE। एसोप्ट्रोफाइल इज बेसिकली समवन हु हैज अ डीप फैसिनेशन विद और डिराइव्स ग्रेट एंजॉयमेंट फ्रॉम लुकिंग एट देयर ओन रिफ्लेक्शन इन द मिरर। और कुछ गलत नहीं है इसमें, बिल्कुल भी ऐसे यू नो एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है अगर समबडी कैचेस यू डूइंग दिस, बिकॉज यार यू लव योर सेल्फ, यू हैव ऑल द राइट्स टू सी योर सेल्फ। यस, सो कीप डूइंग दैट, कीप लविंग योर सेल्फ। और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ जीवन दास।

0: मॉडर्न कट्स तक सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस फेस्टिव सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलु स्टोर्स में।
1: ऑल इन लगा और हो जा रिचार्ज।
2: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
3: This hour is brought to you by
4: Shine Smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
5: Commercial Bank. We are saving more. Turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

तनीषा के साथ आप रेडियो 106.3 एफएम पर ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर, और एक इतनी वाइज बात करने वाली हूँ क्योंकि जब मैंने मेरे ख्याल में ये चीज़ आई मुझे लगा भाई तनीषा क्या कर रही है यार तू, सो आई हैड टू शेयर इट विद यू. सो आई रेड कि अ क्लाउड कैन वे मोर देन 1 million pounds डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वाटर इज पैक्ड इन साइड इट. सो कितना भी वे कर रहा हो 1 million, 2 million वॉट एवर, बट स्टिल हमको क्लाउड बहुत ऐसे यू नो लाइट वेट सा और कॉटन की तरह सॉफ्ट और एयरी फील होता है, राइट? हम देखते हैं जिस तरह से. सेम वे इन लाइफ ऑल ऑफ अस, हम सब लोग अपने अंदर इतनी सारी बातें भरकर चल रहे हैं, दिमाग में इतना सारा बोझ है हमारे, ये करना है, वो करना है, ये अचीव नहीं हुआ अभी तक, वहाँ तक नहीं पहुँचे, यू नो ऑल दीज थॉट्स कीप सराउंडिंग अस ऑल द टाइम, एंड हमें नहीं पता कि सामने वाले इंसान के दिमाग में और कितनी सारी चीज़ें हैं. हमें अपना पता है, राइट? हम तो हैवी है ही उन थॉट्स की वजह से, वो भी तो होंगे ना. बस इसी चीज़ का ख्याल रखते हुए बी अ बिट काइंडर एंड नाइसर टू पीपल नो मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, क्योंकि उनकी लाइफ में हो सकता है कि कोई वर्स सिचुएशन हो बट यू जस्ट डोंट नो अबाउट इट, एंड वाइस वर्सा यार, दे ऑल्सो हैव टू बी नाइसर एंड काइंडर टू यू बिकॉज आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो उस इंसान को नहीं पता है. सो दैट वे वी ऑल बी आउट देयर फॉर ईच अदर कि ओके आई अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बट आई एम हियर फॉर यू, आई कैन लिसन टू यू, और सबसे बड़ी चीज आई कैन गिव यू अ स्माइल दैट विल मेक समबडीज डे फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. वो सोचेंगे उसके बारे में कि यार आई सॉ दैट स्ट्रेंजर, उसने मुझे देख के स्माइल किया, और ये इतनी छोटी सी चीज है बट स्टिल ये हमारे लिए बहुत मैटर करती है. सो जस्ट डू दैट, है ना? वाइज तो मैं हो गई हूँ, मानोगे आप इस बात को, है? चलो गाना सुनते हैं. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha hai aapke saath. Olive Richard chal raha hai yahan par. Liam James ka aaj ka mera sawal hai ki Tapsi Pannu ka iPhone chori ho gaya to uske paas kya bachega? तापसी पन्नू का अगर आईफोन चोरी हो गया तो उसके पास क्या बचेगा? एंड गेस व्हाट, ये मुझसे किसने पूछा था? ये मुझे सिमरन ने पूछा था. सो या ये बीमारी वहां भी फैल चुकी है. बताएं मुझे, मैसेज कीजिए 3311-1063 पर या फिर कॉल कर दीजिए 4444-1063 पर और बताएं कि तापसी पन्नू का अगर आईफोन चोरी हो गया या खो गया तो उसके पास क्या बचेगा. सुन रही है रेडियो ऑल, जियो बिंदास.

0: Radio Olive, your happiness frequency. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
1: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.
3: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Golden Diamonds today.
4: Hello to all the listeners of Radio Olive.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

0: कट्स तक सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस फेस्टिव सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलु स्टोर्स में।
1: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: Only laga aur ho ja recharge. Only recharge.
4: Only recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
5: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
6: शाइन स्मार्टर दिस सीजन विद मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। एक्सचेंज योर ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइन सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके।
7: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर।

तनीशा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 एफएम पर ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर। और लेम जान्स में मैंने आपसे पूछा था कि अगर तापसी पन्नू का आईफोन खो गया या चोरी हो गया तो उनके पास क्या बचेगा, और मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया गया है, बिल्कुल भी नहीं किया गया है। आई हैव गॉट द करेक्ट आंसर ओवर हियर। मुझे एक्चुअली इसका आंसर नहीं आया था व्हेन सिमरन आस्क्ड मी, ओके, बट यू गाइज आर समथिंग एल्स। अब तो आप मुझसे ऊपर पहुंच चुके हो लेमनेस में, पर मैं प्राउड महसूस कर रही हूँ भाई वर्ड। एंड यस द करेक्ट आंसर इज टाइप सी चार्जर, यू गेट इट राइट। बट दिस इज सो फनी यार, एंड दीज लिटिल थिंग्स इट ब्रिंग्स सच लाफ्टर, सच इनोसेंट लाफ्टर इन पीपल्स फेसेस ना, दैट्स जस्ट ब्यूटिफुल। वही तो चाहिए हमें अपनी डे टू डे लाइफ में, बस इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ। तो अगर आपको मेरे सवाल सुन के, क्योंकि वो काफ़ी हद तक लेम होते हैं, गुस्सा आ रहा है या फिर आप अनॉय हो रहे हो, डील विद इट, यू साइंड अप फॉर दिस। हाँ जी, फिलहाल भेज रही हूँ एक बहुत बढ़िया गाना, सुन रही है रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर स्मार्ट कैजुअल स्टाइलिश डेनिम्स स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच्ड डिटेलिंग का फिनिश
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए Spectacular festival offer.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
4: Olive Recharge.
5: This hour is brought to you by
6: Shine Smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
7: Commercial Bank. We are saving more. Turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

अच्छा तो हम चलते हैं, कब मिलेंगे? कल मिलेंगे ना यार, इतना भी सबर नहीं हो रहा, हद हो गई है। You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Tanisha आपके साथ, Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर और वक्त हो चुका है मेरे जाने का मेरी जान। मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे, नए हफ्ते की शुरुआत, छुट्टियाँ खत्म, बैक टू ऑफिस। आई नो कैसा महसूस कर रहे हैं आप, बट कोई बात नहीं, ज़्यादा छुट्टियाँ भी होंगी ना तो फिर हम उनकी वैल्यू करना कम कर देंगे, सो इट्स बेटर, ठीक है। और अच्छा है, बिजी रहेंगे वो भी सही है, बस ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना है, अपना ख्याल रखा करो, वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इफ़ यू हैवंट, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, गो एंड फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया और चेकआउट कीजिए हमारी पोस्ट, उस पर लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए, हमें पता चलना चाहिए अब तक चीज़ें पहुँच रही है। और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास। Radio

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
1: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में. फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स 6th ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बेनोम रन. इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर. ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे. फाल्कन फिटनेस बेनोम रन. वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल.
2: द बिग Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

हैप्पी सैटरडे। सिमरन कौर आपके साथ। देखो यार, आई नो दुख होता है, दर्द होता है, ये ईद की छुट्टियां चली गई है। बहुत सारे लोगों की तो आज भी ईद की छुट्टी है, सो आप लोगों का कल से ऑफिस चालू होगा और आप वार्म अप करना आज से स्टार्ट कर दीजिए। सिमरन कौर आ चुकी है, जबरदस्त इवनिंग्स जो है वो शुरू हो चुका है। आपकी ईद की छुट्टियों के बारे में भी जानेंगे, अभी तो आए हैं, 4 घंटे अपने होने वाले हैं बेबी। 9 बजे तक रहूंगी आपके साथ, लेकिन उससे पहले आपका आज का दिन कैसा रहा, आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस मुझे भेज दीजिए 3311106।

0: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर।
2: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.

0: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: This hour is brought to you by
3: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बिन उमरान। इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर। ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे। फाल्कन फिटनेस बिन उमरान, वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: This hour is brought to you by
4: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

ऐसा लग रहा है कि ईद की छुट्टियां वो कल ही की बात है, वो 24 तारीख को मैं आपसे बात कर रही थी। ईद की छुट्टियां अनाउंस हो चुकी है और आप लोग लंबा वीकेंड करने वाले हो। यू छुट्टियां ऐसे चुटकी बजा के जो है वो निकल जाती है, लेकिन वो खुशी जरूर देके जाती है, वो जो अपना टाइम आपने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना होता है, एक यू नो फेस्टिवल को जो है वो सेलिब्रेट करना होता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रैवल कर रहे थे, वो आज रात तक लौट जाएंगे क्योंकि कल जो है उनको ऑफिस जो है वो ज्वाइन करना है। बहुत सारे लोग आज भी आ चुके होंगे और जो लोग यहाँ पे थे हमने उनके साथ भी सेलिब्रेट करने की कोशिश की, ईद मजलिस के थ्रू आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश की। क्या होता है कि जब भी ईद होती है या कोई और भी फेस्टिवल का सेलिब्रेशन होता है, हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि हम ऑन एयर यहां पर रह के जो है वो आप लोगों को हर तरीके से एंटरटेन कर सके, आपको गिफ्ट जिता सके, आपको कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करवाएं, आपका फुल ऑन एंटरटेनमेंट जो है करवा सके, ताकि आप लोग अकेला ना फील करें छुट्टी का क्या है यार, हम तो बाद में कॉम्प ऑफ ले लेंगे यार अपना। वेल, और मेरी छुट्टियां कैसी रही? बढ़िया है, मैं भी दोस्तों के साथ घूमी फिरी और रेस्ट भी किया, सो कुल मिला के मजेदार मेरा फ्राइडे रहा। मेरा तो फ्राइडे था यार। सुनते रहो रेडियो ऑलिव, कहते रहो जियो बिंदास।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर 1 आरजे
5: सिमरन के साथ.
6: This hour is brought to you by
7: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

हम नॉर्मल चीजें जो है वो वैसे ही अपनी डाइट में भी ऐड कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप ठंडी चीजें जो है खाएं, पानी टाइम पे पीजिए, एंड उसके साथ साथ हमारी डाइट में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, सो वो चेंजेस को भी एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है हम गर्म चीजें जो है वो खाते हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वो गर्म रह सके, लेकिन सर्दियों में आपको थोड़ा सा मामला ठंडा रखना चाहिए अपने खाने का, ताकि आपका दिमाग भी ठंडा रहे, गर्मी तो ना लगे वो तो अलग बात है, बट ये सिमरन कौरी आपके साथ, जियो बिंदास।

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

0: देखो दोस्त, दिन ब दिन ना राइस पेपर की शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: ये बात है जी। लोग राइस पेपर के पानी पूरी बना रहे हैं, गोलगप्पे बना रहे हैं, राइस पेपर को एकदम क्रिस्प करके उसका शेप दे के उसके अंदर गोलगप्पे में जो आप आलू और काला चना डाल के पानी में डुबो के खाते हो, लोग उसको वैसे खा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ फील ली जा रही है। स्वाद तो ठीक है, पता नहीं कैसे आता होगा, क्योंकि जो स्वाद गोलगप्पा दे सकता है वो गोलगप्पा ही दे सकता है, राइस पेपर से तो आपको क्रंच वाली फील मिलेगी बस, और कुछ नहीं है। सिमरन गौरयाओ के साथ जियो बिंदास।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Hi Radio Olive 106.3 listener. This is Shah Rukh Khan.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Akshay Kumar.
5: Hi, this is Anushka Sharma.
6: And I'm Ashwin Vasi.
7: This is Ranveer Singh. Stay tuned.
8: 106.3 इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
9: आरजे सिमरन के साथ.
10: This hour is brought to you by
11: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: तो खाने पीने की बात चल रही है, मैं थोड़े दिन पहले सारा अली खान का एक इंटरव्यू देख रही थी। आपके साथ सारा अली खान ने अपने आप को यू नो इस इंडस्ट्री में आने के लिए कितना ज्यादा उन्होंने फिट किया है और अपनी कैसी कैसी आदतें उन्होंने का त्याग किया है वो उनके इंटरव्यू को सुन के पता लगा। वो क्या क्या खाती थी जब वो न्यूयॉर्क में पढ़ रही थी, तो वो क्या क्या खाती थी सुनिए जरा।
1: मैं न्यूयॉर्क में पढ़ती थी, वहाँ पे ना लार्ज पिज्जा ज्यादा महंगा था कंपेयर टू टू मीडियम पिज्जा, बिकॉज इट शुड बी अ डील कि मीडियम पिज्जा पे बाय वन गेट वन 50% ऑफ। सो आई डिडंट रियलाइज दैट वुड मीन बिकम आल्सो 50% मोर, सो आई डिडंट डू द मैथ प्रॉपरली एंड आई वुड ऑर्डर टू मीडियम पिज्जा एवरी सिंगल डे ऑलमोस्ट, एंड माई ब्रेकफास्ट यूज टू बी 3 चॉकलेट चिप ब्राउनी। हाउ डिड आई कंज्यूम दिस ब्रेकफास्ट? माइंडलेसली On the way from the cafeteria to the class, 5 minutes का walk था, मैं टहल टहल के शायद 7 मिनट पे पहुंच जाती थी और तीनों brownies down. I'm not joking. My closest school friend, okay, Ipsita and Mia, on our way, we stop at the vada pav stall. And Ipsita, I was like, how many do you want? And she said one. So I said, 6 ले आओ. And they were like, what? Pav bhaji with extra butter, biryani with extra aloo. When you think you've put enough aloo, you haven't. I used to actually say these things back in the day.
0: Oh my God, हम सबको अपनी अपनी वो आदतें जो हैं, वो याद आ गई हैं। आई नो मैं भी अब अपने ऊपर बड़ा कंट्रोल करती हूँ, लेकिन जब मैं पीछे सोचती हूँ ना सारी अपनी बुरी आदतें जो कि मैं बैक टू बैक खाती थी, भाई साहब चिल्स आते चिल्स।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: This hour is brought to you by
6: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: कहते हैं गो विद द फ्लो राइट।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: हां जी जहां पर आप जो है वो सिचुएशन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप कुछ करेंगे तो कुछ होगा नहीं, तो उस सिचुएशन के लिए आप गो विद द फ्लो हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में करियर में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, कुछ करने की सोच रहे हैं, उसके लिए आप गो विद द फ्लो हो जाएगा तो वो नहीं होगा। उस फ्लो के लिए आपको हाथ पैर जो है वो मारने पड़ेंगे, वरना डूब जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि कंडीशन अप्लाई है, हर चीज गो विद द फ्लो में नहीं होती है। आपको खुद भी उठना पड़ता है और तैरना सीखना पड़ता है। वाह सिमरन कौर, वाह क्या बातें कर दी हो यार। सिमरन कौर आपके साथ,
1: रेडियो

0: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर।
2: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
4: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
4: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: चलिए Gen Z डिकोडेड में एक और वर्ड को डिकोड करते हैं।
1: Gen Z डिकोडेड।
2: ऐसे है क्या?
1: दा दा दा।
0: हाँ जी। सिमरन कौर आपके साथ। एक वर्ड है फेक्स्टिंग। फेक्स्टिंग का मतलब होता है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ ओवर टेक्स्ट मैसेज जो है वो लड़ाई करते हो, उसको बोलते हैं फेक्स्टिंग। लेकिन अगर मैं बात करूं इस चीज की, कभी भी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो, झगड़ा हो, मैसेज पे कभी भी कोई भी चीज मत करना, क्योंकि जब आप मैसेज पे लिखते कुछ हो उसकी टोन कुछ और चली जाती है। जब बात लड़ाई की हो, जब बंदा स्पेशल हो, तो फिर अपने जो भी बात है वो आप फेस टू फेस करेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओवर टेक्स्टिंग अगर फाइट होती है तो हमेशा अगली ब्लॉक पे ही खत्म होती है। सिमरन कौर आपके साथ।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
0: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
1: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
0: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए spectacular festival offer.
2: Hi, Radio Olive 106.3 listeners, this is Shahrukh Khan.
3: I'm in number one, Radio Olive.
4: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ।
7: This hour is brought to you by
8: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: This hour is brought to you by
6: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

मम्मी की सारी बातें वो याद आती है, बेटा सोना खरीदो अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जब से एडल्टिंग हुई है ये सारी चीजें अब समझ लगती है। शाइन स्मार्टर सीजन विद मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स लेकर आए हैं आपके लिए। आप एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी को, चाहे आपने कहीं से भी खरीदी हो, नए डिजाइन के साथ। सिर्फ मेकिंग चार्जेस आपको पे करने हैं। और उसके साथ साथ एक ग्रेट न्यूज ये भी है कि अभी इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, इसकी वजह से आप कतर में 15% गोल्ड प्राइसेस पर जो है वो सेव कर सकते हैं। सो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के शोरूम आज ही विजिट करिए। खरीदना है खरीदिए, ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज करना है करिए, लेकिन फायदे के टाइम पे इसका फायदा जरूर उठा लीजिए। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में. फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बिन उमरान. इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर. ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे. फाल्कन फिटनेस बिन उमरान, वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ.
4: This hour is brought to you by
5: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

जी मैं क्या जी सुनियो किदा दी हाल चाल गाल। हमको ना बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि अरे आप लोगों की तरफ से ना रेडियो वाले ने हमको ये मैसेज भेजा कि आपने जो ये जीत लिया वो जीत लिया और कार्ड की डिटेल्स मांग रहे हैं। सो क्या है, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको पता है कि इतने सारे स्कैम जो है वो आजकल हो रहे हैं, तो रेडियो वाले के भी बहुत सारे पेजेस बन गए भाई। जब बंदे का नाम होता है ना तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो आपको यहां पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है। रेडियो वाले आप लोगों से किसी भी तरह की कोई भी कार्ड की डिटेल्स जो है वो नहीं मांगता है। अगर आपने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया तो आप जीतेंगे और आपको हमारे ऑफिस में बुलाया जाएगा और आप आके अपना प्राइस कलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी किसी भी लिंक पे आप क्लिक मत करिए, क्योंकि हम आपको ऐसा कोई भी लिंक नहीं भेजते हैं कि आप इसमें इंफॉर्मेशन फिल करिए फिर आप जीत सकते हैं। सो मेक श्योर कि आपको कोई भी ऐसा मैसेज आता है इसको रिपोर्ट ब्लॉग करिए और हमको जरूर इन्फॉर्म करिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड यस, रेडियो ऑलिव के सोशल मीडिया के थ्रू आप हमारे बहुत सारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये आपको जरूर करना है। उसके लिए आपको फॉलो करना है हमारा सोशल मीडिया एंड रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड रखना है ताकि आप कभी भी सुन सके जब आपका मन करे देसी बॉलीवुड म्यूजिक सुनने का। सिमरन कारे आपके साथ जियो बिंदास।

असली कंट्रोल जो है ना, रील्स देखते टाइम आपका चेक होता है। आपको पहले भी बताया कि खाने पीने से रिलेटेड रहती है, कभी तो कहीं पे पिज्जा बन रहा है, कभी चीज सैंडविच बन रहा है, बन मस्का खाया जा रहा है, नूडल्स खाए जा रहे हैं, ये मेरी फीड होती है। सबसे स्पाइसीस्ट मोजरेला स्टिक खा रहे हैं, जबकि मैं स्पाइसी खाती भी नहीं हूं, लेकिन देखने का मजा आता है। अब ऐसे टाइम पे रील्स तो देख ली, बट वो मैं रील्स कब देखती हूँ, जब मैंने खाना पीना सब फिनिश कर लिया और एकदम मस्त चेंज करके मैं बेड पे लेटी हुई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि अभी बस नींद आ जाएगी। लेकिन जब ये रील्स देखने बैठती हूँ उसके बाद, भाई साहब मेरी पेशेंस का टेस्ट होता है। मेरे को मोजरेला स्टिक्स खाने का भी मन करता है, फिर मेरे को पिज्जा खाने का भी मन करता है, फिर मेरे को चीज सैंडविच खाने का भी मन करता है, अचानक से चाय पीने का भी मन करता है। फिर मैं ये सारी रीलें देखती हूँ और फिर अपना मन भटकाने की कोशिश करती हूँ। फिर मैंने साइड में रखा हुआ मेरा अपना डार्क चॉकलेट, अपनी मीठे की क्रेविंग को भगाने के लिए वो थोड़ा सा डार्क चॉकलेट जो है वो खा लेती हूँ और बोलती हूँ नहीं सिमरन कौर, नहीं तुम कुछ ऑर्डर नहीं करोगी, तुम किचन में जाके कुछ नहीं लोगी, मैं अपने रूम में नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर मैंने रूम में चीजें रखी तो फिर मैं खा लूंगी। तो आप लोग भी ये कर सकते हो, अगर आपके साथ इस तरह की चीजें होती हैं तो अपने रूम में प्लीज खाना मत रखिए, वरना खा लेंगे आप, फिर रिग्रेट होंगे बाद में। सिमरन कौर आपके साथ, चियो बिंदास।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
1: हाय, मैं हूँ सारिका. मुझे सुन रहे हैं रेडियो
2: ओलिव
1: 106.9.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ.
5: This hour is brought to you by
6: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

क्या बोल रहे सब लोग, एमएवे बनता है मालूम है ना, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे, लेट्स डू इट।

चलो दोस्तों अब आप लोगों के नाम ले लिए जाए। हाँ जी अब्दुल रजाक जी ने 50 बार अपना नाम लिख के भेज दिया है और नेम गेम में चाहते हैं कि उनका नाम लिया जाए। लीजिए नेम गेम स्टार्ट होने से पहले आपका नाम ले लिया जी। सिमरन गौर आपके साथ जबरदस्त इवनिंग्स में मैं आपको रूल बता देती हूँ। आप मुझे अभी के अभी सुन रहे हैं ना, रेडियो को सुन रहे हैं, तो आप अभी के अभी अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। जी हाँ 3311063। इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ आपने अपना नाम लिख के भेजना है। क्विकली चलिए मैं आप लोगों के नाम पढ़ने स्टार्ट कर रही हूँ। शाबाज, मकसूद, रूमी, राहुल, रिजवान, आसमा, अक्सा, वहाब, इस्लाम, नक्श, रवि, अहमद, प्रीति, उमर, आकाश, सजाद, भारत, आसिफ, शेख, जिवान, फहीम, असरार, रसूल, दिलदार, जुनैद, सांसे चढ़गी, वरिंदर, लीजी, राहुल अगेन, इमरान जी, मोहम्मद जी, सूरज जी, रोहित जी, दिनेश जी, रोशन जी, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अब जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए अब आप थैंक यू लिख के भेज सकते हैं और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी बनाना मत भूलिएगा।

0: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बिन उमरान। इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर। ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे फाल्कन फिटनेस बिन उमरान। वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: This hour is brought to you by
4: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास।

चलो जी, 4 घंटे अब पूरे हो चुके हैं, जबरदस्त इवनिंग्स गए। आप लोगों की ईद की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, अभी वार्म अप हो गया होगा, आज मूड थोड़ा सा ऐसा होगा, छुट्टी से वापस जब आप ऑफिस जाते हो तो थोड़ा सा मूड ऐसा होता ही है, लेकिन कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए, फिर से वीकेंड आएगा, फिर से आपको छुट्टी मिलेगी। अगले 2 घंटे मिडनाइट लाउंज को एंजॉय करिएगा, एंड आपकी और हमारी कल शाम को 5 बजे फिर से होती है मुलाकात, फिर से एंटरटेन करेंगे। यार ओवरथिंकिंग मत करना, टाइमली सो जाना और रील्स मत स्क्रॉल करना, ठीक है? खाने पीने रहो, ऐश करते रहो, चेहरे दे अड्डे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो। रेडियो ओलिव पर

देखो यार, हर कोई किसी ना किसी का इंतजार कर रहा है, और मैंने कहा ना, अगर इंसान सही है तो इंतजार गलत नहीं। इसलिए कभी भी किसी इंसान का जो आपका मूड चेंज कर दे, आपके साथ वाइब्स चेंज कर दे आपकी, और आपको यू नो झट से खुश कर दे, आपका मूड बना दे बढ़िया से गाने गुनगुनाने का, तो बस वही इंतजार है जो वसूल हो गया, नहीं वर्थ इट है। जब हम किसी की ऐसी पर्सनालिटी के पास जाके बैठते ना, जो इंसान कब में टाइम एक मिनट से एक घंटा बिता दे और दो मिनट से दो घंटे निकलवा दे, पता ही नहीं चलता यार उनके साथ, तभी तो कहते हैं वर्थ इट है। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश, मिडनाइट लाउंज में। और कैसे हैं आप? अच्छा, कभी नोट किया है आपने कि आप सुबह से शाम तक कितने सारे लोगों से मिलते हो? कभी किसी से जॉब पाने के इंतजार में मिलते हो, कभी किसी से इंक्रीमेंट तो वहीं बॉस से छुट्टी पाने के एक इंतजार में मिलते हो, लेकिन वहीं एक इंतजार है, हर किसी ना किसी को एक इंतजार है अपनी लाइफ में, या तो उस चीज का जिसको पाने के लिए वो सुबह शाम एक जिद पकड़े बैठा है ना, लेकिन एक इंतजार है उस शख्स का जो उसे समझ पाए, उसके बिन कुछ कहे उसको अपने गले लगा पाए, बिन कुछ कहे उसकी हर एक चीज जान पाए। शायद मैं वो हूं ना हूं, लेकिन एक कोशिश मेरी भी है कि मैं तुम्हारा वो दोस्त बन पाऊं जिसका तुम्हें इंतजार है, जो तुम्हारे बिन कहे वो धुन चला पाए, जिसको सुनते ही तुम्हारा दिल गुनगुना जाए। तो चलो इंस्टा पे जाओ, रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो कर जाओ, और इनबॉक्स में जाके अपने दिल की कोई भी बात मेरे साथ झट से शेयर कर जाओ, फिर देखो सामने से रिप्लाई आएगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, मन में भर के मत जियो, मन भर के जियो। इसलिए मन के अंदर जो इतना सारा कुछ भरा हुआ है ना, इसको जल्दी से निकालो, मन हल्का होगा तो जरूर हर धुन के साथ कहेगा जियो बिंदास।

ये है मिडनाइट लाउंज कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बेनोम रान इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम अन्ना राजन सी आर सलीम और रोशन बशीर ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे फाल्कन फिटनेस बेनोम रान वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM

0: अच्छा वैसे हम सब मतलब ह्यूमन नेचर कहूंगा कि हम सबका एक नेचर होता है कि हम लोग पैसा हो या फिर कोई रील ही क्यों ना, एक छोटी सी रील ही पकड़ लो, हमको कोई भी एक ऐसी चीज दिखती है ना उसको सेव करने की सोचते हैं, इसको बाद में पक्का से यूज करेंगे, राइट? वो बाद कभी आता ही नहीं, वो प्रेजेंट में हम उसको जी पाते ही नहीं, नहीं? 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश, मिड नाइट लाउंज में, और आप सुन रहे हैं
1: रील वाली रियल कहानी,
2: रील वाली रियल कहानी।
0: अच्छा मेरे को लगता है कि हम सब ना इंस्टाग्राम पे या फिर टिकटॉक पे बहुत सारी ऐसी जहाँ पे भी आप रील्स देखना पसंद करते हैं, वहाँ पे उन्हें सेव तो करते हैं, बस 1% लोग हैं जो उन्हें वापस खोल कर देखते हैं और उसको यूज करते हैं। मुझे लगता है 1% लोगों के, शायद इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें हम देखते तो हैं, जैसे कि कुछ पोइट्रीज दिखती हैं, कुछ वीडियोज दिखती हैं, क्यूट सी रील्स आ जाती हैं, रिलेटेबल कोट, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ देखी जाए तो रिलेटेबल कोट या फिर वो गाने जो आपका दिल छू जाते हैं, उन सबको आप सीक्रेटली अपने वर्जन ढूंढ रहे हैं। आप सोचते हैं कि कल को कभी ना कभी देखना है मेरे पे सूट करेगा, एक ऐसी फोटो लूंगा उस पे गाना सूट करेगा, नहीं एक ऐसी क्लिक करूंगा फोटो या वीडियो जिस पे कोड डाल दूंगा, और फिर उन्हें सेव कर लेते हैं। हम उन मोमेंट्स को कह देते हैं कि रुक जाओ, ठहर जाओ, लेकिन मैं आऊंगा, और आते हैं नहीं, हम खुद ही भुलक्कड़ हो जाते हैं। पर लाइफ तेज होती चली जाती है, वो चीजें सेव फोल्डर में एक डिजिटली डायरी बनकर रह जाती हैं, जिससे हम अनरीड इमोशंस सोचकर छोड़ ही देते हैं, वो फिर ऐसी पड़ी रह जाती है, नहीं? लेकिन आज रात एक रील वापस खोल कर देखो, शायद तुम्हें खुद की कोई पुरानी कहानी वापस मिल जाए, क्योंकि उस टाइम पे जब हम वो रील सेव करते हैं ना, उस समय हमारे माइंड के कुछ अलग इमोशंस, अलग टारगेट्स होते हैं, चाहे वो जिम वाली हो या फिर बेस्ट गाने वाली या फिर वो इमोशनल टाइम वाली। यकीन मानो, चाहे वो तुम्हारा कोई भी अकाउंट हो, चाहे वो तुम्हारा खुद का अकाउंट हो या फिर कोई तुम्हारा डुप्लीकेट अकाउंट तुमने बना रखा हो, अनदर अकाउंट, या फिर अपना कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसको आप सारे रील्स शेयर करते हो, थोड़ा सा वापस स्क्रॉल करके जल्दी से हिस्ट्री में जाओ एंड ट्रस्ट में आप वो वीडियो खोल के देखो, आपको बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी। उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा था, उस समय आप क्या क्या सोच रहे थे, आपको दिखना अचानक से याद आ जाएगा। कल क्या खाना खाया था ये याद नहीं आएगा, लेकिन वो याद आ जाएगा क्लिक करते, और वापस कहीं जाएगा नहीं। सुनते रहिए रेडियो ऑल इन जियो बिंदास।

अच्छा कभी कभार ना जिंदगी एक मिस कॉल से नहीं, एक रॉन्ग नंबर से बदल जाती है। हाँ हाँ, एक रॉन्ग नंबर से, जब अचानक से किसी को कॉल लग जाए और पता चले कि वो इंसान तो वो है ही नहीं जिसको आप कॉल कर रहे थे, लेकिन उससे फिर भी बातें करे जाने और करते करते करते करते एक नया रिश्ता क्रिएट हो गया। नहीं, रेयर है पर रेयर ही सबसे इंटरेस्टिंग है। 106.3 रेडियो ओलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश, मिडनाइट लाउंज में, और आप सुनने जा रहे हैं

0: फ्लैशबैक।
1: अच्छा भाई, बॉलीवुड ने भी एक ऐसी ही कहानी लिखी थी जहां ना पहली मुलाकात थी ना पहली नजर का प्यार, सिर्फ एक गलती का डायल था, मतलब एक रॉन्ग नंबर, और उसके बाद शुरू हुआ परफेक्ट फिल्मी रोमांस। भाई मूवी है, मूवी में वो चीज होती है जो आप सोच सकते हो, और कई बार तो आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि वो डायरेक्टर सोच रहा है ना, वही तो सोच है जिसको आप सोचने के लिए मजबूर हो गए हो। वैसे वो एक रॉन्ग कॉल, एक अननोन वॉइस और एक लव स्टोरी जिसके बिना ना 90s किड्स की यादें बिल्कुल अधूरी है। तो बताइए, स्पेशली टारगेट 90s किड्स हैं, लेकिन उसके बाद भी भाई आज की जेन जी जनरेशन भी ना पुरानी फिल्में देखने में बड़ी शौकीन हो रही है, मैं देख रहा हूँ। तो आप सभी से मेरे सवाल था, तो बताइए वो कौन सी मूवी है, वो कौन सी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसमें रॉन्ग नंबर ने दो दिलों को जोड़ दिया था। सोचिए, याद करिए और जल्दी से फिल्मों की मेमोरी का रिवाइंड बटन दबाइए और मुझे इंस्टा पे जाकर मैसेज कर जाइए। रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और आपका जवाब। सबसे पहले सटीक जवाब देने वाले के नाम के साथ एक बढ़िया सा गाना मैं प्ले करूंगा। अभी तो फिलहाल ये गाना, क्या बात है, सरफराज जी की रिक्वेस्ट पर और शादाब जी की रिक्वेस्ट पर, दोनों की एक ही गाने की रिक्वेस्ट आई, तो इसको चलाते हैं ताकि दिल की दोनों की नहीं आप सबकी धड़कन भी सुन के कहे जी उपिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

श्रुति जी, स्कूल की यादें तो यार मेरी भी बहुत सारी हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई लिसनर आपको मैसेज करे और साथ ही साथ ये कहे कि आपके शो को सुनने के टाइम पे ना कई बार मेरे को अपने स्कूल टाइम याद आ जाता है, क्योंकि आप उन मूवीज का जिक्र कर देते हैं, उन बातों का जिक्र कर देते हैं जो पूरा नॉस्टैल्जिया कनेक्ट कर दे। क्या बात है। 106.3 रेडियो वॉलेट से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश मिडनाइट लाउंज में और आप सुन रहे हैं

0: फ्लैशबैक।
1: और श्रुति जी का जवाब बिल्कुल सही आया है, क्योंकि भाई बॉलीवुड ने ना मैजिक को सबसे प्यार करने का तरीका सिखाया है। और मैजिक ऐसा है कि आज की नहीं, हर जनरेशन, जेंजी हो, 90s की हो या फिर उससे पहले की और आने वाली जनरेशन हो, बॉलीवुड का जादू ही अलग होता है। जहाँ हीरो ने कॉल तो डायल किया किसी और को, पर फोन उठाया किसी और की किस्मत ने, मतलब किसी और की किस्मत से फोन उठा और उस एक गलती ने दो लोगों को मिला दिया, दो शहरों की दूरी मिटा दी और एक पूरी जनरेशन को सिखा दिया कि भैया प्यार सिर्फ नोटिफिकेशंस पे नाम से आए और कुछ मेरे बाबू ने थाना थाया इसके अलावा भी होता है। प्यार की घंटी बज जाती है, कुछ बातें हो जाती हैं और गुफ्तगू वो फोन पर बस स्माइल करके हो जाती है, वहीं से प्यार की शुरुआत हो जाती थी। वैसे वो फिल्म है मन, 1999 की मूवी और आमिर खान और मनीषा कोइराला की आइकॉनिक लव स्टोरी, जहां एक रॉन्ग नंबर से शुरू हुआ बॉलीवुड का सबसे सॉफ्ट सोलफुल रोमांस। कभी कभी गलतियां भी परफेक्ट डेस्टिनी होती हैं, सच्ची बता रहा हूं। तो इसलिए बिंदास गलतियां कीजिए, लेकिन उन गलतियों से सीखा कीजिए कि अगर कोई इंसान मिला है ना, उसकी कद्र किया कीजिए। गलतियां भूलनी चाहिए, इंसान और उस शख्स की यादें नहीं, मतलब उस इंसान की कद्र भी नहीं। आ रहा हूं वापस, कहीं जाएगा नहीं, सुन रही रेडियो, जियो बिंदास।

अच्छा मुझे क्या लगता है ना कि इस डिजिटल दुनिया में एक सिंपल सा छोटा सा मैसेज वो भले ही 24 घंटे बाद डिसअपियर हो जाता है लेकिन उसकी छाप जो है ना वो हमेशा के लिए दिल पे रह जाती है। नहीं 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश मिडनाइट लाउंज में और आप सुन रहे हैं डिजिटल डायरीज। वो वैनिश्ड मैसेज परमानेंटली इंपैक्ट छोड़ जाते हैं, 24 घंटे तक वो स्टोरीज रहती है लेकिन उसके बाद वो गायब जरूर हो जाती है लेकिन वो दिमाग में उथल पुथल करती रह जाती है। वो चैट जो डिसअपीयरिंग मैसेजेस होते हैं वो वैनिश हो जाते हैं, हट जाते हैं लेकिन उसके बाद भी वो दिमाग में घूमते रह जाते हैं, लगता है उस समय स्क्रीनशॉट ले लिया होता। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू क्रिएट कर देती है, मतलब सामने वाले के मन में आता है जिस दिन से आप भले आप वो झूठा बहाना बना दे कि यार वो ना मेमोरी स्पेस फुल हो जाती है, इस चक्कर में मैंने सिर्फ ये डिसअपीयरिंग मैसेज वगैरह लगा रखे हैं, ये अपने आप हट जाएंगे वैनिश हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या लगता है कहीं ना कहीं ये वो शख्स है जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, क्योंकि आप भी जानते हैं जिस जो इंसान बहुत स्पेशल है, सोचिए आपके फेवरेट इंसान कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी का या किसी का मैसेज आ जाए, आप उस चैट की स्क्रीनशॉट्स ले लेकर रखेंगे और ट्राई करेंगे कि जब व्हाट्सएप पूरा डिलीट कर रहे हो, मतलब व्हाट्सएप की चैट जब डिलीट कर रहे हो लेकिन वो मैसेज बाकायदा वहीं रहे, है ना, उसकी हिफाजत करेंगे। तो मुझे लगता है कि चीज़ें भले ही कुछ देर की होती हैं जो आप स्टोरी डालते हैं चैट लिखते हैं लेकिन उसमें जो लिखते हैं या डालते हैं ना, यकीन मानिए वो किसी के दिल पे छाप छोड़ जाता है। तो इसलिए अगली बार भी जब भी कुछ पोस्ट करें या मैसेज करें ना, तो ये सोच लीजिएगा कि शायद वो पोस्ट या मैसेज तो 24 घंटे बाद चला जाएगा, हट जाएगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट किसी के दिल पे पता नहीं क्या छाप छोड़ कर जाएगा, किसी के इमोशंस किसी की उम्मीदें शायद ठेस पहुंचा जाएगा। तो इसलिए कुछ ऐसा पोस्ट कीजिए, ऐसे मैसेज कीजिए जो कोई याद करे ना तो उसके स्क्रीनशॉट लेना पसंद करे और उसको देखकर मुस्कुरा जाए, फिर यहां से जब भी कोई धुन बजे ना वो उसके साथ गुनगुना के कहे जियो पिन।

अच्छा, हम लोग ना बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, पेशेंस खो देते हैं जब हमारी लाइफ में कुछ मतलब टाइम से ज्यादा डिले होना स्टार्ट हो जाता है। नहीं, लेकिन कुछ कहानियां होती हैं जो एक रात में ही आपकी सोच बदल देती है, जैसे कि ये कहानी। कभी कभी ना जिंदगी रात के एयरपोर्ट जैसी होती है, लाइट्स ऑन, अनाउंसमेंट्स चालू होती रहती हैं, सब लोग अपने अपने डेस्टिनेशंस की रेस में होते हैं और उसी बीच एक फ्लाइट डिले हो जाती है। पर उस डिले का भी एक अपना ही मैजिक होता है, क्योंकि कुछ कहानियां टाइम पे नहीं बल्कि परफेक्ट टाइम पे शुरू होती हैं। जी, उस रात दो स्ट्रेंजर्स, दो अलग जिंदगियां एक ही वेटिंग एरिया में कुर्सी पर टकराते हैं, एक साथ टकरा जाते हैं। एक के फोन में नो नेटवर्क, दूसरे के दिल में नो क्लोजर। एक का बोर्डिंग पास भीग चुका था बारिश में, दूसरे किसी पुराने रिश्तों में भीग कर अपने आंसू बहाता हुआ यहां तक आया था। और फिर बात शुरू होती है एक सिंपल सी स्माइल से, एक शेयर्ड कॉफी कप से, कुछ अल्फाजों से, एक विंडो के बाहर बरसती हुई बारिश को देखते हुए, और एक कॉन्वर्सेशन जो एक रात में किसी की जिंदगी का डायरेक्शन बदल देती है। फ्लाइट डिले होती गई पर उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग ऑन टाइम लैंड हो गई। कभी कभी ना एयरलाइन का डिले दिल के कनेक्शंस बना देता है। जरूरी है किस्मत कनेक्शन। ये कहानी उन दो लोगों की है जो उस रात सिर्फ फ्लाइट का नहीं अपनी किस्मत का टेक ऑफ देख रहे थे। एक रात एक कहानी और एक अनजानी सी पिकनिक। इसलिए कहते हैं कि जब कभी कोई चीज डिले हो रही हो ना, इसलिए कहा जाता है, शुरू से बड़ों के मुंह से सुना है, बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो कुछ डिले हो रहा है ना, उसके पीछे कुछ रीजन है। देयर इज ऑलवेज बी अ रीजन बिफोर, लाइक किसी चीज के पीछे पक्का कोई ना कोई रीजन होगा। सो बिफोर गेटिंग अपसेट, ऑलवेज ट्राई टू थिंक कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आ रहा हूँ फिर से एक और नई कहानी लेकर चलते, लेकिन अभी तो फिलहाल एक प्यारा सा गाना चलाने जा रहा हूँ। जी, ये गाना ज्योति नूर जी की रिक्वेस्ट पे चला रहा हूँ, आप भी साथ में सुने, एंजॉय करके। कही जी उपिंदास।

0: देखो जब हमारा माइंड अपसेट होता है ना तो हम कहते हैं कि प्लीज हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। जब हम बहुत खुश होते हैं तब हमको सब भीड़ भड़ाकर ठीक लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद लगता है कि एक टाइम जो हम खुद के साथ स्पेंड करें और थैंक यू कहें इस यूनिवर्स को जो भी हमारे साथ हुआ। लेकिन अफसोस जब हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं ना तो लिटरली हम अकेले कमरे में नहीं आते, सच्चाई बता रहा हूं। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश मिडनाइट लाउंज में, और बारी है
1: यू शुड नो बिफोर यू स्लीप।
2: बिफोर यू स्लीप
0: आज रात एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, एक रिचुअल, एक हीलिंग मोमेंट, एक प्रॉमिस खुद से करते हैं। जब बेडरूम की लाइट डिम हो और रात की खामोशी धीरे धीरे सेटल हो रही हो ना तो एक काम करना, बस एक नेगेटिव थॉट चूज करना और उसे रूम के बाहर ही छोड़ के आना, मतलब गेट खोलना बाहर फेंक के आना। जैसे कोट स्टैंड पर जैकेट लटकाते हो ना वैसे ही अपने जो जितने भी स्ट्रेस है ना उसको बाहर नॉब पे लटका के आ जाना और कहना कि भैया इस रूम में जरूरत नहीं। बढ़िया सा सूदिंग सा म्यूजिक चलाना, म्यूजिक तुम्हें क्या चलाना, बस तुम रेडियो की वॉल्यूम हाई करना, मेरे साथ बढ़िया से गाने सुनना और अपने आप को ये समझाना हर रोज सुबह एक रीस्टार्ट बटन मिलता है राइट, जिसके लिए रात से ही प्रिपरेशन करनी होती है। बचपन में स्कूल जाया करते थे ना तो कैसे रात को पूरा बैग तैयार करके सोते थे, है ना, और जब बैग प्रिपेयर नहीं करके सोते थे तो अगले दिन स्कूल में भुगतना पड़ जाता था, कोई ना कोई कॉपी पक्का मिस होती थी। तो रात को प्रैक्टिस करके सो कि नेक्स्ट डे बहुत अच्छा होने वाला है और अगले दिन से एक नई शुरुआत करो। अगर आज डाइटिंग में फेल हुआ चलता है यार, वी आर ह्यूमंस, हमारे से मिस्टेक होती है। अगर आज किसी से कुछ गलती हो गई इट्स ओके, उसे माफ करना है। अगर खुद से भी हुई है तो खुद को भी माफ करना है, लेकिन माफी का मतलब जानते हो ना कि उस चीज को आगे रिपीट नहीं करना है। तो एक प्रैक्टिस तो हम कर ही सकते हैं खुद को थोड़ा पॉजिटिव करने की, क्योंकि जो नेगेटिव थॉट्स को हम रूम के अंदर ले आते हैं ना ये हमारे सर गोल गोल गोल गोल गोल घुमाते रहते हैं, है ना। सोन परी काली परी याद है बचपन वाली, तो सोन परी के साथ रहना है अच्छे थॉट्स के साथ। आ रहा वापस एक और बार, कहीं जाएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो ऑल एफ सी ओपन दास।

जिन लोगों के सामने आपके मन का जो बच्चा खुश महसूस करता है ना, यकीन मानिए वो लोग आपके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनके सामने आपको कुछ और पन्ने की जरूरत नहीं है। आप खुलकर बात कर पाते हैं, खुलकर हर चीज अपनी बयां कर पाते हैं। तो यार मैं वही दोस्त हूँ आपसे जो आपकी हर एक चीज आपके दिल से जानना चाहता है, उस पर कोई आर्टिफिशियल पर्दा नहीं चाहता, कोई आर्टिफिशियल टेक्सचर नहीं चाहता जिसके वजह से आप अपनी फीलिंग्स छुपाएं, क्योंकि मैं वही दिल की आवाज़ हूँ जो आपके दिल की आवाज़ सुनना चाहता है। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज़, मैं हूँ आरजे आकाश मिडनाइट लाउंज में। और अब फिलहाल स्टूडियो क्लॉक के हिसाब से मुझे यहाँ से बाय-बाय करना होगा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद भी रिश्ता बनाए रखना है, अटूट कर देना है, गहरा कर देना है एकदम से। कैसे? इंस्टा पे जाना है, रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो कर जाना है, इनबॉक्स में जाके हाई आरजे आकाश और अपने दिल की बात झट से शेयर करना है। कभी अकेला फील नहीं करना यार, कभी नहीं। ट्रस्ट मी, इस दुनिया में कहने को हर कोई अकेला है और कभी भी आप अकेले नहीं, क्योंकि आपके साथ आपके दिल की आवाज़ ये रही है। बस आप हाई आरजे आकाश और अपने दिल की बात लिखो तो, आजमाओ तो, बाकी जाता जाता बढ़िया बढ़िया गाने, इवन कुछ गाने वो जो आपने रिक्वेस्ट करें तो सब एक साथ लाइन से अपनी लाइब्रेरी से लगा देंगे, ताकि मेरे जाने के बाद भी आपका जो ये सफ़र है, चाहे जिंदगी का हो या गाड़ी का, इसी तरह से बेशुमार प्यारा सा रहे और आपकी राइड वाओ सूदिंग वाह वाह वाह सोलफुल सी रहे। तो चलिए मैं चलता हूँ, इजाजत दीजिए, मैसेज का इंतजार करता हूँ। खुश रहिए और हर धुन को सुनकर अपने दिल को कहिए जियो बिंदास, गुड नाइट, टेक केयर।

0: बिंदास आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओली 106.3 FM जियो बिंदास। बिंदास मॉर्निंग
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओली 106.3 FM।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिन

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

Radio Olive, your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।